उत्तम सलोक साध के बचन मुलीक लाले रतन सुन समाप्त हो तो उधार आप त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग।

सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वा जे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र

गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जोग जोग वेदाना ले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगमा छपाया ले गावन तुदनो

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हरजन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हरस पाया।

भाव। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पहो करिया। ऊड़े ऊड़िया वैसे को सात पाछे, बचरे शरिया तिन कवन खलावे, कवन चुगावे। मन में सिमरन करिया, सब निदान दा

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सत्यावै सत्यावै तुझी हर सच्चे सृजनारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर ध्यावा हो संत हो जी सब दुख विसारणारा।

रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म पहया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया।

अवर काज तेरे कित न काम मिल साज संत पाज केवल नाम सरन जाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जाप तप सं

हमरे दुष्ट सबे तुम कावहु आपा दे मोहे बचावहु सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बरचा हूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद है मुझे उबरिए मन काल का त्रास निवरिए हूं जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु करियो रक्षा राख ले मोहे राखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा।

हा खड़ग केत में शरण ते हारी आप हादले हो बारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाओ सवैया तपते को उमा करे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब वैब भेद कहे हम एक न जानियो श्री

पुपे। नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं।

कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है।

भेजो पति जन्म पर म्याता सतगुर सब सुनाया सतगुर जबर दाता को ने सब सुनी लोक सभा सतगुर मिले सच पाजने विचो आप गवाया।

सुनै इहो निदान जपे मन कोए सब जुग में तागिंगत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सलमतात केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक करम।

आप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरस पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

राणा राव न को रह रंग न तुंग फकीरा वारी आपो अपनी कोए ना बंदा धीरा कहे कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहर न भवजल फेरा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस तारे सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जी सोरठ महला पंजवा अबनासी जीअन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बरतन बिरला पावै कोई अबनासी जीअन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बरतन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाईया बहुत दुख ना होई रहाओ बड़भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी तूर नानक दास बाशै जिन हर नाम हृदय परोई बड़भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी तूर नानक दास बाशै जिन हर नाम हृदय परोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे

प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचा सोच ना हो वई जे सोची लख वार चुप चुप ना हो वई